एफएम अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति कार्यक्रम भजन सुमिरन प्रत्येक शनिश्चरबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धताको सुनौलो परम्परा जय माता दी गोल प्यालेस शुक्रपथ न्यू रोड। प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यहाँहरूकै शुभ सन्देश शुभेच्छा र प्रेरक प्रसङ्गका साथमा कार्यक्रम शुभ प्रभात सुन्न सक्नुहुनेछ मात्र एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz। कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हरेक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: भजन सुनिरन सुनिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस शुक्रपथ न्यूरो

0: पाए। नेपाल टेलिकम को सहुलियत दर का पैकेज खरीद करना #14/15# टाइल गर्नुहोस्।
1: नेपाल टेलिकम राष्ट्र को संचार।
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने। अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8। भजन सुमिरन अध्यात्म ज्योति को यो प्रस्तुति का प्रायोजक शुद्धता को सुनौलो परंपरा जय माता दी गोल पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड। आदरणीय श्रोता यी प्रायोजित सन्देशहरू पछाडि पुनः यहाँलाई स्वागत छ र अहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ सुनका असली गहनाहरूको निमित्त प्रसिद्ध जय माता दी गोल प्यालेसको प्रायोजनमा कार्यक्रम भजन सुमिरनमा केही सुमिर भजनहरू।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्ततः

से, सम होने से। जहां भी शांति समता होगी ये घटना घटेगी, लेकिन तुम इसको मांगो मत, अन्यथा यही अशांति बन जाएगी, यही तनाव बन जाएगी। अष्टावक्र कहते अभी और यही, मांग तो सदा कल के लिए होती, मांग तो अभी और यही नहीं हो सकती। मांग का स्वभाव वर्तमान में नहीं ठहरता, मांग का अर्थ ही है हो, कल हो, घड़ी भर बाद हो, क्षण भर बाद हो। मांग अभी तो नहीं हो सकती, मांग के लिए तो समय चाहिए, थोड़ा ही सही पर समय चाहिए। और भविष्य है नहीं, जो नहीं है उसी का नाम भविष्य, जो है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान और मांग का कोई संबंध नहीं होता। जब तुम वर्तमान में होगे तो पाओगे कोई मांग नहीं, और तब घटेगी ये घटना। जब इसे घटाने का जीना रहेगा तब ये खूब घटेगी। इस पहेली को ठीक से समझ लो, इस पहेली का एक एक कोना पहचान लो। जिस दिन तुम कुछ भी ना मांगोगे उस दिन सब घटेगा। जिस दिन तुम परमात्मा के पीछे दीवाने होकर ना दौड़ोगे वो तुम्हारे पीछे चला आएगा। जिस दिन तुम ध्यान के लिए आतुरता ना दिखाओगे, तुम्हारे भीतर कोई तनाव ना होगा, उस दिन ध्यान ही ध्यान से भर जाओगे। ध्यान कहीं बाहर से थोड़ी आता, जब तुम तनाव में नहीं हो तो जो तुम्हारे भीतर शेष रह जाता उसका नाम ध्यान है। जब तुम्हारे भीतर वासना नहीं है तो जो शेष रह जाता उसका नाम ध्यान है। झील है, तरंग उठ रही, हवा के चकोरे हैं, झील का पूरा पूरी छाती तूफान से भर गई है, आंधी है, सब उथल पुथल हो रही है। आकाश में चांद है पूरा, लेकिन प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि झील कप रही, दर्पण कैसे बने। चांद का प्रतिबिंब बनता है, टूट टूट जाता हजार हजार टुकड़ों में, चांदी फैल जाती पूरी झील पर, लेकिन चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता है। झील शांत हो गई, लहरें कहीं चली गई, लहरें कहीं से आई थी, लहरें झील की थी, फिर सो गई, झील में वापस उतर गई, झील अपनी स्थिर अवस्था में आ गई। वो जो चांदी की तरह फैल गया चांद था, देव की छाती पर सुकुड़ आया, एक जगह ठीक प्रतिबिंब बनने लगा। जैसे ही तुम्हारे मन की झील तक तरंग नहीं होती, तरंग यानी वासना, तरंग यानी मांग, तरंग यानी ऐसा हो और ऐसा ना हो, जब कोई तरंग मन की झील पे नहीं होती तो सत्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। तो जो बनता है चांद तुम्हारे भीतर, उसके सौंदर्य का क्या कहना, उसके रस का क्या कहना। रसधार बरसती, मिलन होता, फिर सुहागरात ही सुहागरात है। लेकिन तुमने मांगा कि चूक हो जाएगी, और मैं समझता हूं मांग बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होती, बड़ी अड़चन है। इतना सुख मिलता है ऐसी घड़ियों में कि कैसे बचे न मांगने से, मानवीय है। मैं ये नहीं कहता कि तुमने कुछ बड़ी अमानवीय भूल की, बिल्कुल मानवीय भूल है। कभी जब क्षण भर को झरोखा खुल जाता है और आकाश बहता है तुमने, कभी क्षण भर को जब अंधेरा टूटता है और किरणें उतरती, तो असंभव है, करीब करीब असंभव है कि इसे न मांगो। लेकिन ये असंभव सीखना पड़ेगा, आज सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, मगर सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी सीखो उतना उचित। अभी तैयार हो जाओ तो अभी घटना घटने को देर नहीं है। जरा भी क्षण भर की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। ये स्थिति घटेगी, इसका तुम्हारे चित्त से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम अपने चित्त को पीछे छोड़ो,
आत्मा तो खराब मत करो, जीवन के सारे सुख विकृत कर डाले, अभी अंतरतम के सुख आ रहे हैं, इन्हें तो विकृत मत करो। सजग रह के मन को नमस्कार कर लो, विदा दे दो। धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसी घड़ी आने लगेंगी, तुम्हारे अनुभव से ही आएंगी, जब मन नहीं होगा तत्क्षण फिर वही जरों का खुलता है, फिर बहती रसधार, फिर उतरता प्रकाश, फिर तुम आलोकित, फिर तुम मग्न, फिर तुम अमृत में डूबे। जब ऐसा बार बार होगा तो बात साफ हो जाएगी, तो फिर मन से तुम अपने को दूर रखने में कुशल हो जाओगे। जब घटे तब घट जाने देना, जब न घटे तब शांति से प्रतीक्षा करते रहना। आएगा, जो एक बार आया है बार बार आएगा। तुम भर मत मांगना, तुम भर बीच में मत आना, तुम भर बाधा मत देना। लेकिन कभी कभी ये भाव भी उठता है कि कहीं ये मेरा पागलपन तो नहीं, बुद्धि ऐसे भाव भी उठाएगी, क्योंकि बुद्धि ये मान ही नहीं सकती कि आनंद हो सकता है। बुद्धि दुख से बिल्कुल राजी, बुद्धि ने दुख को पूरी तरह स्वीकार किया है, क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री, अपने ही संतान को कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो बुद्धि मानती है दुख है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन महासुख जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई। ऐसा कहीं होता है, कोई कल्पना हो गई, कोई सपना देखा, किसी देवा स्वप्न में खो गए, किसी सम्मोहन में उतर गए, जरूर कहीं कुछ पागलपन हो गया। बुद्धि ऐसे बार बार कहेगी, इसे सुनना मत, इस पर ध्यान मत देना। अगर इस पर ध्यान दिया तो वे घटनाएं बंद हो जाएंगी, वे द्वार छरों के फिर कभी ना खुलेंगे। एक बात ख्याल में रखना, आनंद सत्य की परिभाषा है, जहां से आनंद मिले वही सत्य है, इसलिए तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। आनंद उसकी आखिरी परिभाषा है, सत्य से भी ऊपर, चित्त से भी ऊपर आनंद को रखा है, सच्चिदानंद कहा है। सत्य एक सीढ़ी नीचे, चित्त एक सीढ़ी नीचे, आनंद परम है। जहां से आनंद बहे, जहां से आनंद मिले, फिर तुम चिंता मत करना, सत्य के करीब हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो हवाएं ठंडी हो जाती, पक्षियों के बीच सुनाई पड़ने लगते, शीतलता अनुभव होने लगती, तो बगीचा दिखाई भी ना पड़े तो भी मन अनुभव में आने लगता है कि राह ठीक है, बगीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जैसे ही तुम सत्य की तरफ पहुंचने लगते हो, आनंद झरता है, शीतल होने लगता मन, संतुलन आने लगता है, सहिष्णुता बढ़ती है, सुख बढ़ता है। एक उमंग घेरे रहती अकारण, कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ता, न कोई लाठी मिली है, न कोई धंधे में बड़ा लाभ हुआ है, न कोई बड़ा पद मिला है। ऐसा भी हो सकता था पद था वो भी गया, हाथ में जो था वो भी खो गया, धंधा भी डूब गया, लेकिन अकारण एक उमंग है कि भीतर कोई नाचे जा रहा है,

की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहां अगर तुम हंसने लगो अकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गए। अगर तुम कहो कि हंसी आ रही है कोई कारण नहीं, फैली जा रही, भीतर से उठ रही, लहर आ रही, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गए। यहां तुम शक्ल बना के चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देख के भूत प्रेत भी डरे, तो बिल्कुल ठीक हो, तो कोई अड़चन नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी, जैसा आदमी होना चाहिए वैसे आदमी, लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल हो गए। परमात्मा को हमने इस बात ही इनकार किया है कि अगर परमात्मा आए तो हम उसे पागल खाने में बंद कर देंगे। शायद इसी कारण नहीं आता, आने से डरता है। तुम जरा सोचो, कृष्ण अगर मिल जाए चौराहे पर, बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधे, पीतांबर डाले, गोपियां नाचती हूं, क्या करोगे? तत्सम पुलिस थाने जाओ। ये क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तुम इस आदमी को जेल खाने में डालोगे। आनंद निष्कासित कर दिया गया है, हमने आनंद को जीवन के बाहर कर दिया है, हम दुख को छाती से लगा के बैठे। यहां दुखी आदमी बुद्धिमान मालूम होता है, यहां आनंदित आदमी पागल मालूम होता है। सारी सरणी उल्टी है। तो स्वाभाविक है, जीवन भर जिसको तुमने बुद्धिमानी समझा है, आज अचानक अगर खोने लगेगी, फिसलने लगेगी, अगर आज अचानक नींव उखड़ने लगेगी तुम्हारी तथाकथित बुद्धिमानी की, और अचानक झांकने लगेगी प्रसन्नता, अकारण ख्याल रखना, पागलपन का मतलब यह होता है अकारण प्रसन्न। कारण भी नहीं है कुछ, बैठे अकेले और मुस्कुराहट आ रही, बस पागल हो गए। क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ पागलों को ही देखा है। ध्यान रखना, पागलों में और परमहंसों में थोड़ा सा संबंध है। पागल भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि गंवा दी। परमहंस भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि के पार आ गए। दोनों पागल बुद्धि से नीचे गिर जाता है इसलिए हंस लेता है, परमहंस बुद्धि के पार चला जाता है इसलिए हंसता है। दोनों में थोड़ी समानता है, पागल और परमहंस में एक बात समान है कि दोनों ने बुद्धि गंवाई। एक ने होश पूर्वक गंवाई है, एक ने बेहोशी में गंवाई है, इसलिए फर्क बहुत है। जमीन आसमान जितना फर्क है, लेकिन फिर भी एक समानता है। इसलिए कभी कभी तुम्हें पागल में परमहंस दिखाई पड़ेगा, और कभी कभी पागल में परमहंस, और कभी कभी परमहंस में पागल, तो भूल चूक हो जाती। पश्चिम के पागल खानों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं जो पागल नहीं। अभी वहां बड़ी क्रांति चलती है इसके संबंध में। कुछ मनोवैज्ञानिक, विशेषकर आर डी लैंग और उनके साथी, एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं कि बहुत से पागल पागल खानों में बंद हैं जो पागल नहीं है। अगर वो पूरब में पैदा होते तो परमहंसों की तरह उनका आदर सम्मान होता। आरटी लोगों को पता नहीं है, इससे उल्टी घटना पूरब में घट चुकी है। यहां कहीं पागल में जो परमहंस समझे जाते हैं। मगर आदमी आदमी है, यहां पूरब में कई पागल परमहंस समझ लिए गए, मगर भूल चूक होती क्योंकि दोनों की सीमाएं एक दूसरे तक पड़ जाती। तो ये शक स्वाभाविक है। एक ही बात ख्याल रखना है इसमें, आनंद बढ़ रहा हो घबराना मत, मगर आनंद पागलपन के कारण भी बढ़ सकता है। सुरक्षा की कसौटी क्या है? सुरक्षा की कसौटी यह है, तुम्हारा आनंद बढ़ रहा हो और तुम्हारे कारण किसी का दुख न बढ़ रहा हो, तो बेफिक्री से जाना।

पागल से डरने की कोई वजह नहीं। अगर पागल भी हो रहा है तो ये पागलपन बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। फिर दे झिझक इसमें प्रवेश कर जाना। डरने का कारण तो तभी है जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने लगो। तुम्हारे नाश से किसी को कोई बाधा नहीं है, लेकिन कोई सो रहा है तुम उसकी छाती पे जाकर ढोल बजाकर नाचने लगो। तुम नाचो, इससे कुछ अड़चन नहीं है। तुम गुनगुनाओ राम का नाम, ये ठीक है, लेकिन माइक लगा के आधी रात में और तुम अखंड कीर्तन शुरू कर दो तो तुम पागल हो। हालांकि कोई तुमको पागल नहीं कह सकता, क्योंकि रामधुन कर रहे ऐसे कई पागल कर रहे हैं। वो कहते हैं अखंड कीर्तन कर रहे, 24 घंटे की कथा की, सो न सो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बाधा डालो तो आधार में को। इतना ही ख्याल रखना, तुम्हारा आनंद हिंसात्मक ना हो, बस ये पर्याप्त है। तुम्हारा आनंद तुम्हारा निजी हो, इसके कारण किसी के जीवन में कोई बाधा न पड़े, कोई पत्थर न पड़े। तुम्हारा फूल खिले, लेकिन तुम्हारे फूल के किरने खिलने के कारण किसी को कांटे न चुभे। इतना ही भर ख्याल रहे तो तुम ठीक दिशा में जा रहे हो। जहां तुम्हें लगे कि अब दूसरों को बाधा होने लगी, वहां थोड़े सावधान होना, वहां परमहंस की तरफ न जाके तुमने पागलपन का रास्ता पकड़ लिया। ओम प्रकाश से किसी को कोई दुख नहीं, बेझिझक बेधड़।

जो उच्च सुंदर था, प्रिय काम्य, जो अच्छा मजा नया था, सत्य सार मैं बीन बीन कर लाया, नैवेद्य चढ़ाया। पर यह क्या हुआ, सब पड़ा पड़ा कुमलाया, सूख गया मुरझाया, कुछ भी तो उसने हाथ बढ़ाकर नहीं लिया। यूं कहीं तो था लिखा, पर मैंने जो दिया, जो पाया, जो पिया, जो गिराया, जो ढाला, जो छलकाया, जो नितारा, जो छाना, जो उतारा, जो चढ़ाया, जो जोड़ा, जो तोड़ा, जो छोड़ा, सबका जो कुछ हिसाब रहा, मैंने देखा कि उसी यज्ञ ज्वाला में गिर गया। और उस क्षण मुझे लगा कि अरे मैं गिर गया, ठीक है, मेरा सिर फिर गया। आदमी सिर के फिरने से परमात्मा को तुम चढ़ाओ, चुन चुन के चीजें, अच्छी अच्छी चीजें, उससे कुछ ना होगा जब तक कि सिर न चढ़े। सो फिर जो कुछ सुंदर था, प्रिय काम में जो अच्छा मजा नया था, सबके सार में बीन बीन कर लाया, नैवेद्य चढ़ाया। पर यह क्या हुआ, सब पड़ा पड़ा कुमलाया, सूख गया मुरझाया, कुछ भी तो उसने हाथ बढ़ाकर नहीं दिया। तुम ले आओ सुंदरतम को खोजकर, बहुमूल्य को खोजकर, चढ़ाओ कोहिनूर, कुमलाएंगे। तोड़ो फूल कमल के, गुलाब के, चढ़ाओ कुमलाएंगे। एक ही चीज वहां स्वीकार है, वो तुम्हारा सिर, वो तुम्हारा अहंकार, वो तुम्हारी बुद्धि, वो तुम्हारा मन। अलग अलग नाम है, बात एक ही है। वहां चढ़ाओ अपने को। और उसी क्षण मुझे लगा कि अरे मैं तिर गया, ठीक है, मेरा सिर फिर गया। लोग तो यही कहेंगे, ओम प्रकाश के सिर फिर गया। कहने तो लोगों को, लोगों के कहने से कोई चिंता नहीं। जब लोग तुमसे कहते हैं सिर फिर गया, तो वो इतना ही कर रहे हैं कि अपने सिर की रक्षा कर रहे हैं, और कुछ नहीं। जब लोग तुमसे कहते हैं तुम्हारा सिर फिर गया, तो ये कह रहे हैं कि बचाओ हमें, इधर इस तरफ मत आओ, हमें मत सुनाओ ये गीत, मत ये हंसी हमारे द्वार लाओ, मत दिखाओ हमें ये आंखें मदमस्त, खबरे मत कहो हमसे। घबराहट है उनकी, भीतर उनके भी यही राग है, भीतर उनकी भी ऐसी ही वीणा पड़ी है जो प्रतीक्षा करती जन्मों जन्मों से कि कोई छेड़ दे, मगर डर है, घबराहट है। बहुत कुछ उन्होंने झूठे जगत में बनाया है, बसाया है, कहीं उखड़ ना जाए। मैं अलाहाबाद में था, मित्र मेरे सामने ही बैठ के मुझे सुन रहे थे, लाखों लोगों ने मुझे मेरे सामने बैठ के सुना है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने

0: तुझे रोका, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, मैं तो जानता नहीं था। साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे। संयोजक ने उनके घर जाके पूछा, उन्होंने कहा बाबा माफ करो, मैं घबरा गए। 20 मिनट के बाद मैंने कहा यहां से भाग जाना उचित, अगर थोड़ी देर और रहा तो कुछ से कुछ हो जाएगा। इस आदमी का तो सिर फिरा है, मेरा फिरा देख। आऊंगा अभी नहीं, जरूर आऊंगा, पर थोड़ा समय दो। और दो रात से मैं सो नहीं सका हूं, और बातें मेरे मन में पूछ रही। नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम करने को पड़े, अभी बच्चे छोटे, अभी घर गृहस्थी संभालनी। जरूर आऊंगा, तुम जाओ, उनसे कहना जरूर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब कोई तुमसे कहता है तुम्हारा सिर फिर गया, वो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि ऐसा मान के कि तुम्हारा सिर फिर गया, मैं अपने आकर्षण को रोकता हूं। उसके भीतर भी अदम्य आकांक्षा है। कौन है ऐसा जो परमात्मा को खोजने नहीं चला है? कौन है ऐसा जो आनंद का प्यासा नहीं है? कौन है ऐसा जिससे सत्य की अभीप्सा नहीं? ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं। जिनको तुम नास्तिक कहते हो वे ही लोग हैं जो घबरा गए। वे ही लोग हैं जो कहते हैं नहीं, कोई परमात्मा नहीं। क्योंकि परमात्मा को इंकार न करें तो खोज पर जाना होगा। मेरा अपना अनुभव यह है कि नास्तिक के भीतर तथाकथित आस्तिकों से सत्य की खोज की ज्यादा गहरी आकांक्षा होती। वो मंदिर जाने से डरता है। तुम डरते ही नहीं, तुम डरते नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी प्रबल आकांक्षा नहीं कि तुम पगला जाओगे। तुम मंदिर हो आते हो जैसे तुम दुकान चले जाते हो। तुम मंदिर के बाहर भीतर हो लेते हो, तुम पर कुछ असर नहीं होता है। नास्तिक वैसा व्यक्ति है जो जानता है अगर मंदिर गया तो वापस न लौट सकेगा। गया तो वैसा का वैसा वापस न लौट सकेगा। तो एक ही उपाय है, वो कहता है ईश्वर नहीं है, धर्म सब पाखंड है। वो अपने को बचा रहा है, समझा रहा है कि ईश्वर है ही नहीं तो मंदिर जाना क्यों, ईश्वर है नहीं तो क्यों उलझन में पड़ना, क्यों ध्यान, क्यों प्रार्थना। मेरे देखे नास्तिक के भीतर आत्मरक्षा चल रही है। मैंने अब तक कोई नास्तिक नहीं देखा जो वस्तुतः नास्तिक हो। आदमी नास्तिक हो कैसे सकता है? नास्तिक का तो अर्थ हुआ कि कोई आदमी नहीं के भीतर रहने का प्रयास कर रहा है। नहीं के भीतर कोई रह कैसे सकता है? नास्ति में कोई जी कैसे सकता है? जीने के लिए हां चाहिए। नहीं में कहीं फूल खिलते? हां चाहिए, स्वीकार चाहिए। जीवन में जितना स्वीकार होता है उतने ही फूल खिलते, लेकिन सीमा के बाहर फूल न खिल जाएं इससे भय होता है। कहीं फूल इतने न खिल जाएं कि मैं उन्हें संभाल ना पाऊं। कल रात एक युवक ने मुझे कहा कि अब मुझे बचाएं, ये जरूरत से ज्यादा हुई जा रही बात। मैं इतना प्रसन्न हूं कि लगता है मैं टूट जाऊंगा। इतना आनंद है कि लगता है मैं संभाल ना पाऊंगा। ये मेरे हृदय का पात्र छोटा है, मुझे बचाएं। मैं इसके ऊपर से बाहर जा रहा हूं, ये मेरी सीमाएं सब टूटी जा रही हैं। और मुझे डर है कि अगर मैं इसके साथ बह गया तो फिर लौट ना पाऊंगा। नियंत्रण कहीं खो न जाए, ये भय। अहंकार दुख के साथ भली भांति जी लेता है क्योंकि दुख में नियंत्रण नहीं खोता। कितने ही तुम रो दुख में, तुम अपने मालिक रहते हो। नियंत्रण खोता है आनंद में। सीमा टूटती आनंद में, दुख में कभी कोई सीमा नहीं टूटती। नरक में भी सीमा नहीं टूटती। तुम नरक में भी पड़े रहो तो भी तुम अपने भीतर मजबूत रहते हो। सीमा टूटती है स्वर्ग में, वहां नियंत्रण खो जाता। जहां नियंत्रण खोता वहां अहंकार खो जाता। जहां नियंत्रण खोता वहां बुद्धि की पकड़ खो जाती, तर्क का जाल खो जाता। वही हो रहा है, घबराना मत, तिरने का क्षण करीब आ रहा है, लेकिन सिर फिरे बिना कोई कभी तिरा नहीं। एक धुन की तलाश है मुझे, जो ओठों पर नहीं सिराओं में मचलती है।
1: आदरणीय श्रोता, आजको यो प्रवचन श्रृंखला यति नै। यसको बाँकी अंश आगामी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।

0: Classic Radio Show.
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। एक बार फिर से इस हफ्ते कुछ चुनिंदा गानों के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ एक बॉलीवुड आर्टिस्ट की जिंदगी की कहानी को यहाँ पर बयां करने के लिए। आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, उन्होंने बॉलीवुड हिंदी सॉन्ग्स को एक क्लासिकल टच दिया, एक नया स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो था वो यही लेकर के आए थे। इनफैक्ट आज की तारीख तक भी हम इन्हें एक लेजेंड के रूप में जानते हैं। नाम है इनका मदन मोहन जी। मदन मोहन जी के कुछ चुनिंदे गाने यहां पर मैं बजाने वाली हूं, आपको सुनाने वाली हूं, साथ ही इनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कुछ ऐसे छोटे मोटे मजेदार किस्से कहानियां जो हैं वो मैं निकाल के लेकर आई हूं आपके लिए। जैसे कि एक ऐसा गाना था जो कि मदन मोहन जी ने 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में कंपोज कर लिया था। कौन सा था वो गाना बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले चलिए यहां पर गानों के सिलसिले को शुरू करते हैं। फिल्म वो कौन थी से सबसे पहला गाना लग जा गले।

क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। और ये गाना सुना आपने लता जी की आवाज में। वैसे जो मैं बात कर रही थी कि एक ऐसा गाना था जिसको कि मदन मोहन जी ने सिर्फ 2 मिनट्स में बना लिया था, वो यही गाना था, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें। ये गाना हुआ कुछ ऐसा था कि वो लिफ्ट में थे और ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक जा रहे थे। बस इसी दौरान, इमेजिन, ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक जाने के बीच में अपनी बिल्डिंग के, उन्हें एक धुन आई अपने दिमाग में। तुरंत जैसे ही वो पहुंचे, वो अपने स्टूडियो में गए, जाकर के उन्होंने इस धुन को रिकॉर्ड की, एंड दैट्स हाउ ये गाना बन गया। इनके म्यूजिक का अंदाज ही कुछ ऐसा था, अलग, निराला। वैसे आपको पता है मदन मोहन जी एज अ म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं आए थे इस फिल्म इंडस्ट्री में, वो तो एज एन एक्टर आए थे। चाहे वो पर्दा, शहीद या आंसू, मुनीम जी, इन सभी फिल्मों के सपोर्टिंग रोल क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने एक्टिंग में भी अपने लक को आजमाया ज़रूर था। लेकिन थैंक गॉड जल्द ही उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि उनका जो सिक्का है वो सिंगिंग में, म्यूज़िक में इनफैक्ट ज़्यादा चलने वाला है। तो आगे सुनाते हैं आपको गाना तुम जो मिल गए हो, रफ़ी साहब की आवाज़ में, हंसते जख्म फिल्म से। और साथ ही आपको बताऊंगी कि कैसे इनके म्यूजिकल करियर की शुरुआत हुई थी बचपन में, एक पुलिस चौकी जा करके। जी हाँ, एक पुलिस चौकी बचपन में पहुंच गए थे और माँ बाप से बहुत डांट पड़ी थी। क्या था ये किस्सा, जानने के लिए सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: 42 शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। मदन मोहन जी के आज गाने आपको सुना रही हूं, साथ ही उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बातें भी आपको बता रही हूं। मदन मोहन जी एक अकेले ऐसे हिंदी फिल्म कंपोजर हैं हु इज क्रेडिटेड एज द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर अ फिल्म जिसका म्यूजिक इनके गुजर जाने के बाद प्रोड्यूस किया गया था। मदन मोहन जी के बेटे संजीव कोहली ने उनके पिता की कॉम्पोजिशंस को रिक्रिएट किया था 2004 की फिल्म वीर ज़ारा में, ये तो आप जानते ही होंगे। वैसे कि आपको पता है कि म्यूजिक में तो अपना नाम मदन जी ने बहुत बखूबी कमा लिया था, लेकिन एक और एक चीज़ थी जिसके लिए ये अपने ज़माने में जाने जाते थे, और वो थी मदन मोहन जी की कुकिंग। सभी लोग कहते हैं कि मदन मोहन जी काफ़ी अच्छा खाना बनाया करते थे। इनफैक्ट जब भी कोई अच्छा गाना बन जाता था तो उस खुशी में ये बहुत ही दावत वाला जो

खाना है एकदम सारे पकवान बना करके सबको बुला करके सर्व किया करते थे। इनफैक्ट मेरा साया फिल्म जो थी ना उसका असल नाम साया था, लेकिन जब मदन जी ने टाइटल ट्रैक तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा ये रिकॉर्ड किया था, उसके बाद उन्होंने डिनर बनाया, इस गाने को बार बार सुना, खुश हुए। राज खोसला जी जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे और दूसरे क्लोज फ्रेंड्स, उनके साथ में उन्होंने ये डिनर किया था और फिर उन्होंने कहा कि इस फिल्म का नाम साया नहीं मेरा साया होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये गाना जो था वो उसमें मेरा साया साथ होगा ये शब्द आया था और सब लोगों ने मान भी लिया। तो चलिए बात हो ही रही है तो सुनाते हैं आपको यही गाना लता जी की आवाज में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। मदन मोहन जी की जिंदगी के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बता रही हूँ, साथ ही उन्हीं के बेहतरीन गाने यहाँ पर बजा रही हूँ। आपको पता है मदन मोहन जी की जिंदगी में म्यूजिक की एंट्री काफी बचपन में ही हो गई थी। दूसरे साल का जन्मदिन था उनका, इमेजिन 2 ही साल के थे वो जब उनके माता पिता ने उन्हें एक ड्रम दिया था तोहफे में। हम सभी को मिलता है ना बचपन वाला वो ड्रम जिसे हम बजाते हैं 2 डंडियों से, कुछ वैसा ही था। और उसी दिन इनके जन्मदिन पर इराक पुलिस बैंड मार्च कर रही थी, क्योंकि ये लाहौर में रहा करते थे बचपन में, तो उनके घर के बाहर ये मार्च चल रही थी। मदन जी ने देखा म्यूजिशियंस को ड्रम बजाते हुए, उन्हें भी लगा, बच्चे थे वो तो उन्हें भी लगा कि मैं भी बजाऊं, तो वो भी उनके पीछे पीछे निकल गए और किसी को पता भी नहीं चला कि बच्चा कहाँ गायब हो गया है। काफी ढूंढने पर, काफी लोगों से पूछने पर, बाद में पुलिस चौकी गए थे, वहां से जाकर के मदन मोहन जी को फिर से लेकर के आए थे, क्योंकि पुलिस को मिल गए थे मदन मोहन जी और वो अपने साथ में इन्हें चौकी ले गए थे। अपने बर्थडे पर, दूसरे बर्थडे पर मदन मोहन जी को इतनी डांट मिली थी, लेकिन उनके घर वालों को क्या पता था कि बचपन का ये जो शौक है वो बड़े होकर के इतना बड़ा पैशन बन जाएगा कि म्यूजिक के पूरे माहौल को हमारे देश में चेंज कर देगा। चलिए, अगर इतना प्यार था मदन मोहन जी को उनके संगीत से, तो यहाँ पर हम भी थोड़ा सा इज्जत देते हुए आगे एक और गाना आपको सुनाते हैं। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

कहीं पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।
1: बहन और भाइयों, हंसना तो भाई मुझे आपका भी ख्याल ही रखना है, इसलिए अब मैं बातें करता हूँ कट और एक के बाद एक पेश करता हूँ 1979 की एन्युअल हिट परेड के तीन और गीत। पायदान नंबर 10 पर एक दिल के टुकड़े हजार हुए, नहीं नहीं वो तो भाई बरसों पुराना गीत था, यहाँ दिल के टुकड़े करवाए थे उषा खन्ना, कुलवंत जानी और यसुदास ने। फिल्म थी दादा।

और ये आई झलक 1979 यानी 1979 के एक बेहद सुरीले गीत की, जो पायदान नंबर 9 पर हिट हुआ था। सुनने के लिए यशुदास, अनुराधा पौडवाल, उषा खन्ना हिंदी पर, और देखने के लिए राजेंद्र कुमार और नूतन, फिल्म साजन बिना सुहागन।

0: यहाँ आगे बढ़ने से पहले गजब की अदाकारा नूतन की सुमधुर महकती हुई आवाज को भी कर ले याद। इतना मीठा बोलती थी वो कि समझो शहद सा घोल रही हूँ।
1: मैं तो यही समझती हूँ कि इंसान को हमेशा अपने पास क्या है ये सोचकर ये जानकर खुश रहना चाहिए। कहते हैं ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स।
2: सही बात है।
1: क्या नहीं है इसका ख्याल भी नहीं लाना चाहिए, इससे मन हमेशा बेचैन रहेगा।
0: नूतन की सुहानी यादों को नैनों में बसाकर अब पल भर के लिए बहनों भाइयों 1979 की छाओं में चले आइए और सुनिए उस सुरीले गायक का गीत जो फिल्म बॉबी में एक धमाके के साथ आकर फिर धीरे धीरे खुद भी गुमनामी की छाओं में छुप गए, शैलेंद्र सिंह। फिल्म थी तराना, संगीतकार राम लक्ष्मण, गीतकार तिलक राज थापर।

0: हो बनो भाइयों, उस फिल्म के तो पांच पांच हीरो थे, संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, विनोद मेहरा और हमारे सुनील दत्त साहब, जिनके बारे में मैंने आज ही के वॉल्यूम में आपसे कहा था ना कि वो देवानंद के साथ 1977 के गीतमाला सिल्वर जुबली फंक्शन के एक चीफ गेस्ट थे और उनकी भी एक बहुत छोटी सी रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई है उसी दिन की हुई। तो हुआ ये था कि जब मैं स्टेज के माइक्रोफोन से ऑडियंस में बैठे हुए सुनील दत्त को स्टेज पर बुलाने लगा तो मैंने देखा कि ऑडियंस की पहली रो में वो बैठे हुए हैं, खुद एक माइक्रोफोन हाथ में लिए हुए। तो मैंने उनसे कहा,
1: सुनील दत्त सर आप ऊपर आइए, जरा ऊपर तो आइए ऊपर, मेरा ख्याल है जो अवार्ड जीतने वाले हैं वही आए तो अच्छा है, मैं नीचे से अवार्ड दे दूंगा सबको। हाँ भाई, जिसकी हाइट हो इतनी तो कहेगा ही।
0: अफसोस कि मेरे प्यारे दोस्त, महान एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सुनील दत्त, जो पहले मेरी तरह ब्रॉडकास्टर थे और कई साल बाद एक बहुत ही नेक और हर दिल अजीज पॉलिटिशियन भी बने, उनकी उस रात की बस इतनी सी आवाज सुनवा पा रहा हूं आपको, क्या बदनसीबी है साहब। खैर आइए भाई, अब दिल जरा हल्का करने की कोशिश करें। ये लीजिए 1979 के हिट गीत नंबर 7 में रेशमी रेखा का प्यार भरा सलाम, आप सब जरा स्वीकार करें। इसके शायर, फिल्म के डायरेक्टर भी थे प्रकाश मेहरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में और किशोर कुमार की आवाज क्योंकि फिर आ गई है हमारी गीतमाला में, यानी गीतमाला की छाव में, इसलिए अब मैं आपको 1978 में किशोर कुमार के अमेरिका, कनाडा और यूरोप के शो की एक आध मजेदार बात और बताता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि किशोर कुमार अपने पैसों के बारे में बड़े ही पर्टिकुलर थे, जैसे सभी अच्छे कलाकारों को खैर होना ही चाहिए हैं। तो एक शो में क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजर ने उनके पैसे एडवांस में नहीं दिए थे, इसलिए जब शाम को किशोर दा को शो में ले जाने के लिए उनकी बड़ी सी आलीशान गाड़ी आई तो उन्होंने जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, पहले कैश सामने रखो फिर चलूंगा। तो ऑर्गेनाइजर मेरे पास दौड़ता हुआ आया कि अमीन भाई, आप फौरन इसी गाड़ी में हॉल में जाइए और जनता को संभालिए, तब तक मैं दूसरी गाड़ी में पैसे लेकर किशोर साहब को लेकर उन्हें ले आता हूँ वहाँ। तो साहब, किशोरदा की आलीशान मोटर कार में मैं पहुँचा हॉल में, ऑडियंस को इधर उधर की बातों में उलझाए रखा, लतीफे सुनाए और फिर आधे घंटे बाद अपना पैसा पाकर किशोर कुमार तशरीफ लाए, मगर उनका मूड कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा था। बाद में मुझे पता चला कि किशोरदा की बड़ी लिमोजीन गाड़ी में, चूंकि मैं हॉल तक पहुंचा था ना, इसलिए मेरे लिए जो छोटी पुरानी मामूली कुमार तशरीफ लाए, मगर उनका मूड कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा था। बाद में मुझे पता चला कि किशोरदा की बड़ी लिमोजीन गाड़ी में, चूंकि मैं हॉल तक पहुंचा था ना, इसलिए मेरे लिए जो छोटी पुरानी मामूली गाड़ी बुक थी, उसी में किशोर साहब को आना पड़ा। खैर, शो शुरू होते ही किशोरदा का मूड ठीक हो गया और वो हमेशा की तरह सुपर हिट रहा शो। बहनों और भाइयों, आपने कभी देखा था किशोर कुमार का स्टेज शो? अरे साहब, वो ऐसी धमा चौकड़ी बनाते थे कि मजा आ जाता था। इधर से उधर दौड़ना, कभी कलाबाजी खा लेना, ऑडियंस के साथ हंसी मजाक करना, ऑडियंस में से कुछ लोगों को स्टेज पर बुलवाना और उनके साथ डांस करना, मगर इन सब हंगामों के बावजूद ना उनका सुर कभी डगमगाता था और ना ही उनका ताल कभी लड़खड़ाता था। अच्छा भाई, किशोर कुमार की तरह स्टेज शो के एक और बादशाह हैं, सिंगर नहीं बल्कि हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, जिनके साथ भी मैं कई देशों के टूर पर गया था कल्याण जी आनंद जी के शोज में सन 1983 में। मगर 1983 तक हमारी गीतमाला की छाँव में पहुंचेगी ही नहीं, इसलिए यहाँ मैं आपको उनकी स्टेज की आवाज़ सुनवाता हूँ। बहनों भाइयों, 1979 की पायदान नंबर 6 से जोड़कर उस पायदान पर उस साल आनंद बख्शी और राजेश रोशन की वो रचना थी जो अमिताभ ने खुद गाई भी थी, मगर मैं आपको वो गीत फिल्म के रिकॉर्ड से नहीं बल्कि उनके 1983 के एक स्टेज शो में की हुई रिकॉर्डिंग से सुनवाऊंगा आपको। सुनिए क्या सुलझा हुआ रौब था अमिताभ बच्चन का, सुपरस्टार की हैसियत से ही नहीं बल्कि गायक के रोल में भी।
2: आओ बच्चों, आज तुम्हें कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: जय हो बजरंग बली की जय।
1: बहनों और भाइयों, अमिताभ बच्चन और मेरी तकदीरें हमेशा एक दूसरे से मिलती रही, कभी रेडियो की दुनिया में तो कभी फिल्मों में या फिर टेलीविजन और स्टेज पर। मगर एक रेडियो को छोड़कर बाकी हर क्षेत्र में वो तो हमेशा पहली पायदान पर रहे और मैं करीब 20वीं-30वीं पायदान के आसपास। और बहनों भाइयों, जरा ये भी देखिए कि बचपन में मैंने क्लासिकल संगीत भी सीखा। अपने स्कूल के क्वायर्स में, यानी दोनों स्कूल्स के क्वायर्स में, मैंने गुजराती, हिंदी, बंगाली, मराठी गीत भी गाए। लेकिन गायन में भी अमिताभ ही मैदान मार गए। खैर साहब, अब मैं अमिताभ ही से इंस्पिरेशन पाकर आपसे जरा गा कर कहूँगा कि

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निःशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निःशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार, गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।
2: टुगेदर वि डेलिभर।
3: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में

जी हाँ, सुनिए एक बड़ा मीठा गीत जो 1979 की छाव में रह गया था। संगीत मशहूर पुराने संगीतकार कानू रॉय का था और शायरी गुलजार की, भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित फिल्म गृह प्रवेश में।

अरे बाप रे, आज बोलते बोलते बहुत टाइम निकल गया और 1979 की सालाना संगीत सीढ़ी के 5 गीत और बाकी हैं अभी और कुछ और छाओ के सुमधुर गीत भी। तो आइए बहनों भाइयों, जल्दी से कदम रखें 1979 की हिट पायदान नंबर 5 पर। इसे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाटकर के साथ एक जरा कम सुनी हुई आवाज दिलराज कौर ने भी गाया था। बोल इंदीवर, धुन

0: अच्छा भाई, उस साल का हिट गीत नंबर 4।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी,

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: मलाई ट्रैक सूट चाहियो,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनि सूट,
4: अनि मलाई

0: पथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: म्यूजिक मस्ती एंड डांस द बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FMAJ 104.8 MHz.
1: The following music is a test.

0: पैलेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
2: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
1: त्यसैले शुद्धता नै।

आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। कैसे कैसे सुहाने दिनों, लाजवाब गीतों और कैसे कैसे प्यारे लोगों की याद दिलाती हैं गीतमाला की वो सालाना पायदाने और गीतमाला की छांव। उन दिनों की कितनी जवानियां आज या तो बुढ़ापे में ढल चुकी हैं या हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी हैं।

विनम आपकी कसम का ये लाजवाब गीत भी देखिए बहनों भाइयों, छांव में रह गया था उस साल, और उसी छांव से मैं आपके लिए ले आया हूं गीत उस अनोखी फिल्म का जो मेरी जिंदगी में भी एक खास मकाम रखती है, क्योंकि सावन कुमार टक की उस फिल्म हवस के क्रेडिट टाइटल्स में मेरा भी नाम आया था। जी हां, डायलॉग अमीन सायानी। मगर सच्ची बात तो यह है बहनों भाइयों कि मैंने उस फिल्म के सिर्फ दो या तीन सीन्स के डायलॉग ही लिखे, और फिर फिल्म की कहानी ने मुझे इतना नर्वस कर दिया कि मैं बिल्कुल बौखला गया। जी हाँ, मेरी आदत पर फिल्म की हीरोइन बिंदु भी खूब हंसी थी। बात ये थी बहनों भाइयों कि हवस की जो कहानी थी ना, वो एक पागलपन की हद तक सेक्सी लड़की की कहानी थी, और मेरे जैसा सीधा साधा भोला भाला इंसान उस गर्मा गर्म कहानी के संवादों को हैंडल कर ही नहीं पाया। शुक्र है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार को मुझ पर तरस आ गया, उन्होंने मेरा नाम तो क्रेडिट्स में बरकरार रखा, एक छोटा सा चेक भी मुझे भेजा, लेकिन फिर डायलॉग्स का जिम्मा खुद ही ले लिया, और साहब बड़े अच्छे संवाद लिखे उन्होंने जिनमें से एक जुमला मुझे अब तक याद है, और वो ये कि एक दिमाग का डॉक्टर उस लड़की की हालत सुधारने के लिए उससे कहता है, मैडम आपको सेक्स की नहीं स्नेह की जरूरत है। तो भाई उसी का सेक्सी हवस से भरपूर गीत मैं ले आया हूं आपके लिए आपके दिल के दरवाजे पर।

दोस्तों, हवस के गीत भी सावन कुमार साहब ही ने लिखे थे और संगीत जाहिर है उनकी सुरीली बीवी उषा खन्ना का था। और छाओ से चुना हुआ आज का अगला गीत है उस फिल्म का जिसमें आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी ही की डायरेक्शन में दूसरी बार टक्कर हुई राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, यानी नमक हराम। मगर ये गीत टक्कर का नहीं था, मिलन का था, दो दोस्तों का मिलन।

अच्छा दोस्तों, अब हमें जरा स्पीड बढ़ाकर तय करना होगा 1974 के हिट गीतों का सफर, क्योंकि 74 और 75 के लिए गीतमाला की छाओ में कि दो दो नहीं बल्कि सिर्फ डेढ़ डेढ़ वॉल्यूम्स ही हैं ना। तो लीजिए ये आई झलकें एक के बाद एक सात सालाना पायदानों की। नंबर 25 फिल्म मनचली।

रोमांस की ये तीखी मीठी खिचड़ी किन दो गजब के कलाकारों ने पकाई थी, याद है आपको? जी हाँ, संजीव कुमार और लीना चंदावरकर ने। और यही जोड़ी उस प्यारी सी फिल्म के टाइटल गीत में पायदान नंबर 24 पर भी थी।

0: आइए फिर एक बार गीत वाला की छाव में।
1: अच्छा अब आओ 1974 की पायदान नंबर 23 पर और बजाओ फिल्म ज्वार भाटा के प्यार का बिगुल।

0: घन सिन्हा। वैसे बहनों भाई, शोर मचाना, हंगामा करना और लोगों की टांग खिंचाई करना, ये सब शत्रुघ्न सिन्हा की पुरानी आदतें थीं कॉलेज के जमाने से। जी हाँ, उन्होंने खुद मुझे बताया था।
1: अमीन साहब, मैं कॉलेज में बहुत ही ज्यादा शरारत किया करता था, तो मैं हर हफ्ते करीब 25 रुपए फाइन कॉलेज के प्रिंसिपल को दे दिया करता था।
2: अच्छा अच्छा।
1: हमारे साइंस डिपार्टमेंट में कुल 600 लड़के थे। मैंने सबको बुलाया और कहा कि जब भी मुझे फाइन होगा तुम सबको 1-1 रुपया देना पड़ेगा।
2: अच्छा।
1: लड़कों ने कहा उससे क्या होगा। मैंने कहा बेटे देखते जाओ। अब मैं मौका ढूंढने लगा कि शरारत करते वक्त पकड़ा जाऊं और मुझे जुर्माना भरना पड़े। जैसे ही नोटिस आती मैं सबसे 1-1 रुपया ले लेता।
2: अच्छा।
1: जमा होते थे करीब 550-600 रुपए, उसमें से 25 रुपए जुर्माने के भर देता और बाकी के 225 रुपए से मजे उड़ाते।
0: अच्छा बहनों भाइयों, उन दिनों कई बार ऐसा होता था कि अगर कोई गीत एक साल में कम बजता तो उसके अगले साल सरताज बनकर रिटायर हो जाने से पहले के मार्क्स भी उस गीत में जोड़ दिए जाते थे। इसीलिए 1973 का गीत नंबर 24 1974 में फिर बजा नंबर 21 पर। फिल्म थी झील के उस पार।

जन्माष्टमी के त्योहार की खुशी में अपने सैकड़ों यारों के साथ हंडी तक पहुंचने की धुन में झूमते नाचते गाते चले आ रहे थे बदला के हीरो शत्रु।

अच्छा भाई, अब पायदान नंबर 20 की यादों की बारात में जरा झांक कर देखिए कि हाय हाय, किसके कमरे में कौन रह रहा है।

साहब छाव में लौटने से पहले 1974 के गीत नंबर 19 को भी जरा याद कर दीजिए। बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म चोर मचाए शोर का गीत था वो, जिसमें शशि कपूर और मुमताज की मोहब्बत जैसे तोता मैना की कहानी बन गई थी।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। अच्छा साहब, गीत माला की छाव में से अब तीन जरा अनोखे गीत मुझसे कह रहे हैं कि अमीन भाई, 1974 की लोकप्रियता की धूम ने तो हमें ठुकरा दिया, मगर आप तो हमें छाव में याद कीजिए। तो हाँ हाँ भाई, यही तो मेरा काम है यहाँ। चलिए तीन गीत छाव के सुन डालिए एक के बाद एक। पहले 1974 की उस फिल्म से जिसका नाम ठोकर आप शायद भूल गए होंगे, और बड़े ही गुणी संगीतकार श्याम जी घनश्याम जी भी आपको याद नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऐसे भूले बिसरे मोती भी मैं कभी कभी चुन कर लाता हूं आपके लिए गीतमाला की छाव।

बहनों भाइयों, उसी साल एक और छोटी सी फिल्म परिणय में बेमिसाल संगीतकार जयदेव का संगीत भी गूंजा था। राग रागिनी के रसियाओं को खास तौर पर पसंद आएगा ये गाना। इसमें मन्ना डे के साथ आवाज थी बोल रे पपीहा वाली वाणी जयराम की।

ओके दोस्तों, अब जरा मुंह का मजा बदलने के लिए एक मनचले नेपाली दरबान से भी मिल डालिए गीतमाला की छाव में। एक गुपचुप गुपचुप डेवलप होने वाले रोमांस की चुगली खाई थी इस दरबार ने। फिल्म का नाम था कसौटी। बहुत पॉपुलर हुआ था ये गीत भाई, लेकिन सालाना संगीत श्रेणी तक नहीं पा

साठ से साठ हो सकते हैं, जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: हम बोलेगा तो
1: चलो तो हम बोलेगा कि बस आज का छाओं के गीतों का कोटा खत्म। अब बैठ जाइए यादों के घोड़े पर और दुल की चाल से कीजिए 1974 की पायदान नंबर 18 से नंबर 12 तक की चढ़ान। नंबर 18 पर उस साल था फिल्म नमक हराम का ये नगमा।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। दोस्तों, आजकल जब ये वॉल्यूम नंबर 38 रिकॉर्ड हो रहा है ना, यानी जून सन 2012 में, नमक हराम जैसी कई शानदार फिल्मों के सुपरस्टार राजेश खन्ना की बिगड़ती हुई सेहत की खबरों ने उनके सभी फैंस को परेशान कर रखा है। खबर यह भी है कि उनकी बीवी डिंपल कापड़िया, जो कई वर्षों तक उनसे अलग हो गई थी, उनकी हालत से दुखी होकर फिर उनके पास आ गई हैं उनकी देखभाल करने के लिए। आइए हम सब राजेश जी यानी हमारे प्यारे काका जी की तंदुरुस्ती की दुआएं मांगते हुए अब सुने उनकी 1974 की एक और हिट फिल्म का गीत, जो उस साल नंबर 17 पर बजा। फिल्म थी आपकी कसम।

0: भाई बड़ी बेचैनी से करवटें बदलते बदलते मुझे अब आपकी कसम ही नहीं बल्कि नमक हराम के भी गीतकार संगीतकार याद आ रहे हैं। गीतकार आनंद बख्शी, जिन्होंने सुनी मुझे कई बरस पहले क्या बताया था अपने सुरीले साथी पंचम यानी आरडी बर्मन के बारे में।
1: आरडी बर्मन मेरा बड़ा अजीज संगीतकार है
0: जी।
1: वैसे बेसिकली वो अपने म्यूजिक में काफी संजीदा रहता है।
0: अच्छा।
1: अदरवाइज वो काफी हद तक एक कॉमेडियन किस्म का इंसान है।
0: अच्छा।
1: कभी कभी वो बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें बताता है जिसे हम घंटों हंसते रहते हैं।
0: अच्छा।
1: और आरडी बर्मन को खाने का बड़ा शौक है। खाने का भी और कभी कभी खिलाने का भी।
0: अच्छा चाहिए।
1: वो खुद भी कुछ दो चार चीजें अच्छी बना लेता है।
0: अच्छा
1: जी हाँ।
0: अच्छा दोस्तों, 1974 की गीतमाला सालाना संगीत श्रेणी पर हम जब एक कदम और बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि अरे पायदान नंबर 16 पर तो वही गीत था जो इससे पहले यानी 1973 की संगीत श्रेणी पर भी बजा था नंबर 26 पर। 2 वर्षों में बढ़ जाने वाला ये गीत फिल्म अभिमान का था।

और अब आने वाला है 1974 का एक और बहुत ही लाजवाब गीत जो उस साल की पायदान नंबर 13 पर पहुंच गया था और जो मेरे फेवरेट गीतों में से भी एक है, इसलिए बहनों भाइयों मैं इसका मुखड़ा ही नहीं अंतरा भी बजाऊंगा आपके लिए। जरा सुनिए कि कितनी नजाकत थी जानेसार अख्तर के शब्दों में और कैसी दिल में बस जाने वाली धुन बनाई थी जयदेव ने। फिल्म थी प्रेम पर्वत, जिसके बड़े काबिल डायरेक्टर और राइटर थे वे।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz को संध्याकालीन प्रसारण प्रारम्भ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.5।